नियाज हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

सके। सदा राठा दे करे ही राठ जम दे, काम सुन के यारां दा वैरी कंब दे। हत्तीवी बाज नीवी पागे लंघ दे, हत्तीवी बाज नीवी पागे लंघ दे। रखी दी नी पल पले आम झूक दी, ओ मैनू जम दे नू, जम दे नू।

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: थोड़े जाते बहुते दर्द जो दिल दे विच लको गया है। लै मां तेरा सियाने वर्गा पुत परदेसी हो गया है, परदेसी हो गया है।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.
1: तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

तुम्हारी तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: is CJMR 1320, the voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: कल तक जड़े केंद्र से गे बाई बाई जिन्ना यो तिलाती मैं आ जिन्नी भी कमाई कल्ला बदले आ टाइम नहीं हो यार भी आ बदले काले आ कमाने काले कर देते बगले देख देख देख देख देख देख देख ओ गुड्डी देख देख

0: Cultures Connect. CJMR 1320, the voice of the city.
1: आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद।

बापू रोवे मच गई फसल गुड़े पांच छे किले नाल चाचे दे सानू चप्पला हुण तक जुड़िया नहीं कित्थों लईए बैग बरसाचे दे सुपने भी आउण सलाबे नहीं साडे घर दियां छत्तां कच्चियां ने करजे विच डुबे हरफ दियां जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने जो तू सुनिया गल्लां सच्चियां ने।